0: सर्विस प्रोवाइड करेंगे। नेशनल ऑटो सर्विस 99 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन। सत श्रीकाल जी, बीबी गोसल जी, सत श्रीकाल।
1: बीबी
0: जी, वारशाह दी हीर जिहड़ी हैगी है, वारशाह दी हीर ते ऐसी रेफरेंस बुक है, ओ कहंदे वी दुनिया दी कोई भी अपने घर जिंदगी दा कोई भी आस्पेक्ट ओहदे विचो लब लो, ओहदी तुहानू रेफरेंस कोई ना कोई मिल ही जाना ओहदे विच।
1: कोई गल नहीं, ओह तां होई गल है। तो कहंदे ना
0: नखरे वाली या कट दी मस्तानी, तू तो मेनू दिसे शकीनन घुंड चो अख पछाणी।
1: बिलकुल
0: चलो शुक्रिया बीबी, होर मिस करदे हुंदे तुहानूं वेखो याद करन वास्ते आ गए। हांजी बीबी जी, सत श्रीकाल। हांजी सत श्रीकाल जी। थोड़ी जी हेलो हेलो जरूर करा दिए, भावे थके टूटे हो अज थोड़ा जा, है ना, सफर बहुत लंबा हो जांदा ना।
1: आवाज सुन के बहुत खुशी हुई है।
0: कॉन्फ्रेंस जी हो रही है, मेहमान आने शुरू हो गए, गए भावे महीना डेढ़ ही अजे पहले सी, लेकिन दोबारा फिर उस जोश खरोश दे नाल फ्रेश फ्रेश होके आए हो के विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच तुहाडी हाजरी लगनी है तीनों दिन। कोई तुसी तैयारी मेंटली प्रिपेयर होके आए हो के तुहाडे कोले मटेरियल दा कोई घाटा है ही नहीं है? चलो बहुत वधिया होएगी, जिस तरह लोकां दा रिस्पोंस आया आपां नूं, जिस तरह लोग आ रहे ने 40 तो 42 दे करीब तां लोग जिहड़े विदेशां तों साडे कोल आ रहे, उन्हां नूं पूरा ठहराउण दा, उन्हां दे खान पीन दा वी पूरा इंतजाम कीता, उन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन, वेखो अज वी 4-5 जणे आए आ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ
2: ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕੇ ਵਾਕਈ
0: ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਚੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵਢਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ
2: ਇੱਥੇ, ਸਹੀ ਬਾਤ,
0: ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਰੂਪ

0: सुहाता जम तंग नेड़ ना आवई रसना हर गुड़ा सेवा शुद्ध न जानिया ना जप आराध ओठ जी जगसा मेरा भगत पादा है गुर तुठ सब कुछ पाया जन नानक सत बलिहार तौड़ी महला पंजवा सुके हरे किए खिनमा है अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव
1: glasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5555 कॉल कीजिए 9054567733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
0: पाई प्रभ सात शीतल पय की नी प्रभ दात प्रभ कृपा ते पय सोहेले।

0: grande pierna, la suerte es oreo.
1: साजन मीत सखा करेक हर हर अखर मन महलेक रव रहे सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी। नौरी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साथ संग सुना है पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर जप

निर्मल गुण गावह नित नीत, गई ब्याज उभरे जन मीत, मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई।

देव परम गए पूरण पैसे नहा शीतला से रखिया बिहारी पात हम तब कृपा धारी नानक नाम जप तो जीवे साध संग हर अमृत पीवे रौली महला पंचमा फिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे का सवारे रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे बात साह साह सब बस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भव होए पलो भगवान साध संगत मिलके नो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक लोट पकड़ी प्रभ स्वामी गौरी महला पंचमा राम पिता प्रभ मेरे मह निर्गुण

कर कर हार्यो अनेक बहु पाती छोटे कत होना ही एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सत कमाया जीत ले ओए महाबिखाती सहज सोहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्बाणी मोरत महला पंजवा कर स्नान सिमर रब अपना।

मंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे ताम राज गौरवम त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोहं पाठे त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा इस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठति कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदम्।

गृहे गृहे निवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं दरिद्र दुःखहारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोगशोकहारिणीं।

ऋषीन्द्रजामिन प्रदान त्रिधास्य रूप धारिणीम् जले स्थले निवासिनीम् भजामि विंध्यवासिनीम् विशिष्ट सृष्टि

विशुद्ध बुद्धिकारिणीं भजामि विंध्यवासिनीं भजामि विंध्यवासिनीं विंध्यवासिन्यै नमः। स्तुतिपाठं प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। विनय करे सदा।

0: काम सफल हनुमान।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम या अली मदद। और आपके लिए अभी फॉल का सीजन चल रहा है, तो फॉल में आपके लिए बड़े सुंदर, बहुत खूबसूरत वातावरण हो जाता है, स्पेशली नॉर्थ में। तो आपको अगर मौका मिलता है वहां जाने का और ऐसे दृश्य देखने का, तो आप जरूर ड्राइव की करके जाइएगा अप नॉर्थ एंड सी द ब्यूटी। तो आप जैसे हर साल मेरे साल जरूर जाते होंगे, देखते होंगे, तो आपको बड़ा आनंद आता होगा, अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये तो साल में एक बार ही ऐसा मौका आपको मिलता है कि आप जाओ और देखो। अब आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया सी आपको बढ़िया बढ़िया आपको घर में सामान लेके आना है, तो आपको बढ़िया टीवी चाहिए। अभी फेस्टिव सीजन गणेश उत्सव से आप जानते हैं कि शुरू हो जाता है, तो आपको बढ़िया सामान आपके घर में लेके आना है, सुंदर सुंदर चीजें अपने घर में लेके आनी है। तो ये सारा कुछ आपको मिलता है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और उनकी दूसरी लोकेशन ग्वालपुर है। तो फेस्टिव सीजन से पहले पहले ही आप अपने घर में ये सारी चीजें ले आइएगा, बढ़िया सा टीवी ले आइएगा, और दिवाली के लिए अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑर्डर बुक कर सकते हैं, तो आपको बढ़िया बढ़िया सामान बिल्कुल समय पे आपको जैसे आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, तो आपके लिए घर संसार जो है वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो आपके लिए अगर आपने फेस्टिव सीजन में अपना बिजनेस प्रमोट करना है, हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 647773। और टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आपको अपने ऑर्डर बुक करने हैं तो आप 905-799-0042 पर कॉल करो, 905-799-0045 पे आप कॉल कर सकते हो। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है, आर यू थिंकिंग ऑफ मूविंग, तो मूविंग के लिए अपनी सारी जो इतना सारा मूविंग कोई आसान चीज नहीं होती है, तो इसको आसान बनाते हैं आपके लिए एचके मूवर्स। तो आप एचके मूवर्स को आज ही कॉल कीजिए 416-524-8004 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको आपने फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। अब इलेक्शंस अक्टूबर 26 को होने वाले हैं, तो आपके लिए अगर इलेक्शन में आपने वोटिंग, तो आपको अपना हक है तो आप जरूर वोट कीजिएगा। तो थॉरल्ड में साद महमूद है, वो काउंसलर के रेस में आगे आए हैं, पर अपनी कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं, यहाँ पे न्यागरा आसपास के इलाके में तो खूब लोगों की सेवा करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन स्टैंड करता है बढ़िया, तो साद यहाँ से थोरल से है आपके लिए। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से साथ। अब अगर आपको मिठाइयाँ लेनी है तो आप समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइए,

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने क्यू इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबी को मेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया सामान लेना है, फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर, तो ये सारा कुछ आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया रेट पे मिलता है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। तो अब आपके लिए योगी ऑटो सेंटर हैमिल्टन में मौजूद है।
2: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट। ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहाँ पे। कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं। अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को। हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464। योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है। आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो आपके लिए अगर आपने हैमिल्टन में रहते हो, आपने कार खरीदी है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्विसेज हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए लोकेशन है। तो आपके लिए हैमिल्टन में आपने अगर गाड़ी खरीदी है, तो आपको बहुत बढ़िया गाड़ी आपके लिए वहाँ पे मिलेगी। पहले आपको एक गीत सुनाते हैं। So let's go to this beautiful song. आप अगर कोई गाना सुनना चाहते हो अपनी पसंद का, तो आप हमें जरूर मैसेज कर सकते हो 647-773-7640 पे कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए ड्राइविंग, तो आप रोज करते हैं काम पे, हाँ जी। तो ये जो ड्राइविंग में क्या होता है जी, थोड़ी सी जगह, 2 इंच की जगह हो तो लोग आगे आपके घुस जाते हैं। तो उसमें जो आगे एकदम आके घुस जाते हैं, तो बाकी सभी जो पीछे लोग होते हैं उनकी टाइमिंग सारी वो खराब कर देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ पे देखा नियाग्रा फॉल में थॉरल स्टोन से जो है एग्जिट ना QEW में, जब आप टोरंटो में जाते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो पीछे ट्रक आ रहे होते हैं, क्योंकि बॉर्डर है ना, तो लोग देखते नहीं है, चेक नहीं करते हैं, इसलिए फिर बहुत सारी बड़े ध्यान से आपको लेन चेंज करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि मैंने खुद देखा कि एक शायद कोई थे, उनका उन्होंने चेक नहीं किया और ट्रक आ रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था ना, बहुत ही बढ़िया ट्रक ड्राइवर था, तो उसने क्या किया कि ट्रक को रोक लिया है ना, बहुत कोशिश की उसने रोकने की, फिर भी जो वैन वाले आगे थे, थोड़ी सी मैंने देखा कि थोड़ी सी उनकी जो वैन थी वो टच हो गई उनके साथ ना, तो इसलिए पता नहीं। अब कई बार मैं भी जब ऊपर वो QEW लेती हूँ, तो फिर ऐसे कई बार बड़ा ध्यान बिना देखे चलने की जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मिरर चेक करती हूँ, तो देखती हूँ कि पीछे ट्रक था, तो इसलिए आप बड़ा ध्यान से जब की हुई रवि किसी भी हाईवे पर
0: मैं

0: जी कैसा लगा इनको, तो बड़ी मस्ती है, क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है जी, जरूर बताइएगा, क्योंकि बताने से ही पता चलता है। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना है, या फिर आपने कोई बढ़िया सी आपके लिए टीवी चाहिए, किचन गैजेट्स लेनी है, या फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बढ़िया फर्नीचर लेना है, सोफा सेट लेना है, तो आपको जाना है टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक आप .com पर जाइए, तो फिर आपको वहाँ पे बढ़िया बढ़िया डील्स मिलेंगी, तो फिर आप अपने ऑर्डर बुक करिए। तो 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। और अगर आपने अभी तक आपका मूविंग होनी है, तो मूविंग के लिए अगर आपको मदद चाहिए, तो HK मूवर्स को आप कॉल कर लीजिए, अपना ट्रक बुक कर लीजिए, तो आपके मूविंग की सारी प्रोसेस को उनकी ऐसे ऐसे टीम्स हैं, बढ़िया टीम्स हैं, वो आपकी सारी मूविंग को बहुत आसान बना देते हैं आपके लिए। तो 416-524-804। अब अगर आप लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हो, तो आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देंगे, तो आप उनको mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी आप ले लो, तो आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सर्विस मिलेगी और बढ़िया आपको आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही कहा मैंने आपको, तो आज ही आप उनका, अगर आपको कोलिजन का काम करवाना है, तो आप मास्टर कोलिजन डिपो वालों को इसकी सेवाएं जरूर लीजिए। तो आइए आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।
1: अजूबे इस दुनिया में आज मैं अपनी जोड़ी, साथ अजूबे इस दुनिया में आज मैं अपनी जोड़ी।

में जब पितर पक्ष हो रहा है उसमें क्या होता है कि हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर एक पूर्वज का हर फली में अलग अलग दिन होता है, तो उस दिन हम उनके लिए जो भी कर सकते हैं पूजा पाठ उनका धन्यवाद करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो पूर्णिमा जो है खास पूर्णिमा है कि क्योंकि मून केक्स बनाए जाते हैं चाइनीज में, तो इसका ये जो पूर्णिमा होती है बड़ी महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो नियाग्रा फॉल में खास करके इसका महत्व है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ इस वीकेंड में आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मून का व्यू है वो अलग होता है तो अच्छे देता है। तभी जब वो डार्क टाइम हुआ था तो मिलियंस ऑफ लोग नियाग्रा फॉल आए थे उसको देखने के लिए। तो आइए अब हमारे प्रोग्राम का समय जो है तकरीबन की तरफ है, लेकिन रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वाता पला है वंडरफुल डे।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

जन्म जन्म के लवेख दुख उतारे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था गुरपूरा हर नाम दृढ़ाया बिन नाव जीवन बिरथा रहा।

0: और मेरा ब्रिजी, ब्रिजी कैसे हैं आप?
1: ऑलवेज
0: चार्टिकला ग्रेट। सो ब्रिजी, बाहर हमारी बॉडी पे स्किन सूख रही है, चोरनियां पड़ रही हैं या कुछ हो रहा है, हमें पता लग जाता है
1: जी।
0: कोई स्वेलिंग आ गई, हमें बाहर से पता लगती है।
1: करेक्ट।
0: सोचे साहब बॉडी में अंदर क्या चल रहा है नहीं पता लगता। आगे हकीम होते थे, हकीम बोलते थे जब बुरा हकीम मिल गया कि नीम हकीम खतराए जान, कोई माड़ा हकीम मिल गया थोड़ी जान को खतरा हो सकता है
1: जी।
0: सो हकीम नब्ज पकड़ते थे, लोगों को बता देते थे क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको ऐसी क्या बख्शिश है कि आप किसी की बॉडी को टच करके बता देते हो कि क्या हो रहा है?
1: जरूर
0: बताइए
1: जी। हमको अभी दिस इज माई

0: 19th ईयर एक्सपीरियंस.
1: तो हाथ आपकी बैकग्राउंड बताएं क्या है.
0: आई डिड माय नॉटिकल इंजीनियरिंग. फिर मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर वाज वैद्य, यू नो ट्रेडिशनल आयुर्वेद
1: वैद्य, वो
0: वैद्य
1: दादाजी.
0: या जी
1: ठीक है. सो अच्छा ठीक है.
0: सो बचपन से आयुर्वेद हमारा ब्लड में है.
1: हाँ.
0: तो ट्रीटमेंट करने के टाइम जी व्हेन आई टच द बॉडी वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम.
1: कहने का आदमी कितने साल तो सो नहीं पा रहा है प्रॉपर्ली.
2: From how many years?
1: जो जो बंदे का बात बता रहे थे.
0: हाँ, चार साल है जी.
1: चार साल तो बंदा सो नहीं पा रहा
0: है. नहीं जी.
1: पैसा ज्यादा आ गया क्या चक्कर था.
0: वो आईटी में था. अच्छा. वो अभी काम भी नहीं कर रहे.
1: ठीक है.
2: इतना प्रॉब्लम.
0: हाँ.
1: अब कितने दिनों के सो रहे.
0: ऑन द थर्ड डे.
1: थर्ड डे. कितनी थेरेपी के बाद.
0: थर्ड सेक्शन शिरोधारा की है.
1: शिरोधारा तीन सेक्शन तो बाद वो बंदा सोन लगा.
2: अच्छा, वेरी नाइस.
1: सो थर्ड आई होंगी है साढ़े दिमाग के बचाले, जी मत्थे के बचाले जगह होंगी आईब्रोज के बचाले, उसे वह थैरेपीज करते हैं तेल के राही. तेल सटते उपरों तो बंदा रिलैक्स हो जाता. कहता ठीक है. सेहत पहला ब्रिज को निकल के बंदा कार च बह के कार तो लगे घर तक जब तक नहाँ नहीं कहता सेहत पहला नहाने तो बाद फिर हो जाए बंदा. बंदे है ना. सो ब्रिज अपना नंबर दीजिए
0: 6479 1369 6479 1369. ऊपर
1: हो गया. ऐड okay. करते हुए. हाँ. आप और कहीं ऐड करते हैं.
0: नहीं.
1: अप्रोक्सीमेट कितने लोगों को मिले होंगे.
0: मैसेज थोड़ा चेक करने के टाइम आई थिंक नियर अबाउट 3000.
1: 3000 लोग तो मिले हूं तक रेडियो.
0: हाँ जी.
1: सो तुसी ये मानते हो ना कि पंजाबी लोगों के कॉम्प्लिकेशंस है यानी कि सेहत का ख्याल नहीं रख रहे.
0: जी
1: है ना हमारी कम्युनिटी में.
0: जी.
1: सो तुसी प्लीज सारे कॉल करो. आज कितने अपॉइंटमेंट है.
0: लिमिटेड अपॉइंटमेंट सर अवेलेबल है जी.
1: आज और कल.
0: आज और कल.
1: हाँ. लेडी हो भी कोई मेल हो भी फीमेल हो भी दोनों कॉल कर लियो.
0: जी.
1: लेडीज वास्ते औरत है जी वो थेरेपिस्ट कर दी है. ये थोड़े बॉडी नू गर्म पोटलिया दे नाल मालिश दे नाल ते सिर ते तेल पाके ते एक इन्हां दी मैं उच्च बहनों ना मशीन ची क्या बोलते हैं उसको.
0: स्वेदन आयुर्वेदिक मेडिकेटेड डिटॉक्सिफिकेशन.
1: इट्स अ स्टीम. पसीना उच्च होता होता होता नहीं का.
0: या इट्स अ हर्बल.
1: पसीना कोई प्रॉब्लम आई थी होता वैसे नहीं होता.
2: क्या दौड़न ते
1: तो होता नहीं. सो तुसी ब्रिजी ने कॉल करना. ब्रिजी नंबर
0: 6479 1369 6479 1369 जी
1: 6479 1369 6479 1369 6479 1369 ते ब्रिजी नू कॉल कर लो. मालिश वास्ते अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल है. थैंक यू सो मच ब्रिजी.
0: थैंक यू सो मच.
1: सो मेरे नाल यादविंदर. यादविंदर सत श्री अकाल जी. की हाल है.
3: हां सत श्री अकाल जी.
1: सत श्री अकाल. किवें हो.
3: हां जी ठीक है जी. ठीक है वधिया जी.
1: अच्छा यादविंदर तुसी सवेरे चाह वगैरह की पीने हो.
3: हां जी.
1: सवेरे उठ के की पीने हो.
3: हां जी चाय पी दी है जी.
1: बिलकुल. इना ने मेरे परसनल तीन सोफे बना के दिते जेड़े अगले 15 साल कितने नहीं जाने.
2: हां जी.
1: यानी कि महीने के मैं $10 पर मंथ से सोफा रेंट से मिल गया. ला लो 15 साल जो कटते मैं $1500 खर्च के पुराने सोफिया नू ब्रांड न्यू बना दिता. इन्होंने नवा कपड़ा चढ़ाया जिदी 10 to 15 साल की वारंटी है. उहदे च फोम भरती तो उहदी शेप चेंज करती. दुनिया के किसी भी सोफे की फोटो लेकर दिखा दो. यिंग पिंग पुछ रहा सी यादविंदर किथे उहनू लियाओ पेश करो. कहिंदा साडे सारे सोफे की कॉपी कर दिंदा है ना. अमेरिका आया ट्रंप नू पुछदा कहिंदा लभ कितों बंदा किथे आ. ते उह कहिंदा RSG कस्टम सोफा लिया कोई. ट्रंप कहिंदा किते मैलनी ड्राइव ते उत्थे जाके पता करो. सो यादविंदर तुहाडा नंबर किन्ना.
3: हाँ जी अपना हैगा 6477051317.
1: से याद अंदर भी यिंग पिंग मंगो कोई इमोशन नहीं. हंसता हंसता कटे है. हैं या.
3: हाँ जी.
1: कटे हंसते हो.
3: हाँ जी.
1: हंसते कटे हो. ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਫਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟਮ ਸੋਫਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਦੂਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹੋਗੇ
3: ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਖੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1: ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਆਪਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਸੂਟਿੰਗ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਸੋਫੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ 647-1313 ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 6477051317 ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬੁਲਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਔਰ 647-1313 6477051317 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों, वाह आप सबका स्वागत है। आशावादी हां, उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डॉलर बचाइए, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस होण, चाहे ग्रैंड फर्नीचर होण। छोटे वड्डा समान वेचदे आ, जिहड़ी स्क्रीन हुंदी आ जी ते टीवी देखदे आ ओह वेचदे आ
1: जी,
0: लेकिन रेगुलर टीवी भी वेचदे आ,
1: बिलकुल
0: लॉन्ड्री भी वेचदे आ
1: जी।
0: छोटे तो छोटा जिहड़ा टेलीविजन आ, किसे नूं एवें ऑफिस ऑफिस च लाउणा हुंदा
1: जी,
0: ओ किन्ने कदा मिल जांदा जी?
1: इस टाइम जे राइट नाउ आपां गल करिए जी, फिर 55 इंच इस टाइम स्टॉक च है,
0: ठीक है,
1: 50 और 40 इंच जेड़े सोल्ड आउट है।
0: अच्छा जी,
1: हां जी, ते जे कोई लेना चाहुंदे कस्टमर ते मैं डेफिनेटली उहनां नूं 55 इंच 399 च दे दूं।
0: साहब जी 55 इंच 399
1: दा ऑफिस च लाओ, नाले बिग स्क्रीन है, नाले 399 ओनली।
0: लो जी, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस वालों ऐलान कर दिता गया 55 इंच दा ब्रांड न्यू डब्बे च बंद टेलीविजन सिर्फ 399 दा।
1: ते जे कोई 65 इंच लेना चाहुंदे आ,
0: हां जी,
1: $100 होर पाउन, किन्ने बने $100 पा?
0: 499 65 इंच टेलीविजन 499 दा। ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस
1: ते और ये सारे ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड डब्बे च बंद मिलनगे, गूगल फीचर्स दे नाल है। गूगल मीन्स के इहदे च तुहानू ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसी डाउनलोड कर सकदे हो, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, 1 year पार्ट्स एंड लेबर वारंटी इंक्लूड इन द प्राइस। 55 इंच 399 ते 65 इंच 499।
0: वाह क्या बात। अच्छा 75 इंच, चलो
1: बिल्कुल 65 तो उपर 75 है। 75 वैसे जेड़ा ना जी टैरिफ लगी प्राइस है 1099 पर, साडे कोल 3 या 4 टीवी इन स्टॉक है, सिर्फ 799 ओनली
0: 75
1: इंच मिलेगा,
0: 75 इंच
1: सैमसंग दा,
0: ठीक है।
1: दे जे 85 इंच लेना है जी,
0: हां जी,
1: ते साडे कोल 85 इंच 1399, सिर्फ 1399।
0: इस सारा जो सारा जो समान है टैरिफ तो पहला वाला समान तुहानू दिता जा रहा है, ले लो जाके। टैरिफ दे बाद वाले जो समान ऑर्डर आने हैं, जिहड़े इन्हां ने ऑर्डर किए हुए उदो जिहड़ी प्राइस आ वधणी है।
1: टैरिफ लगी प्राइस इहदी $1800 है जी।
0: अच्छा
1: 85 इंच कोई भी लैणगे 1799, या कोई सेल लगी भी तो 1699 तो घट नहीं मिलना,
0: ठीक है,
1: पर 1399

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ। तो सुनते रहें रेडियो गोल्ड, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा। सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह कीमती, गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ। The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold. गुड इवनिंग, थोड़ा सब दा स्वागत है प्रोग्राम लेके, थोड़े लिए हाजिर हो गए हाँ। हर सैटरडे 5 बजे तो लेके 6 बजे तक हुंदा है थोड़ा ते साडा साथ रेडियो गोल्ड। कोई भी गलबात करना चाहते हो, माई नंबर इज 4169106000 और स्टूडियो से नंबर है 4162337368। तुसी सारे जानते हो 2337368। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टुडे, 23 डिग्री टेम्परेचर, 26 सितंबर सैटरडे दा खूबसूरत जा दिन। जांदी जांदी बहार सानू बिल्कुल दिखा के जा रही है कि जिंदगी विच कदे भी कुछ भी हो सकता है। इन्ने ठंड तो बाद एकदम इन्ना खूबसूरत ब्यूटीफुल जा दिन और आई होप तुसी सब ने इस दिन नू इंजॉय किया होगा। जिंदगी च बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आंदियां ने, लेकिन जेकर तुसी प्रॉब्लम्स दे अगे अड़ जांदे हो, खड़ जांदे हो, तो प्रॉब्लम्स भी आई थिंक डर के चलिया जांदियां। कहंदे हैं कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो बस जिद पर अड़ तो सही। जब सहना खुद को है तो बता कि तुम्हारा तमाशा क्यों करना इस बात का। लाइफ इज टू शॉर्ट एंड टू स्वीट एंड मेक इट टू स्वीट, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी च प्रॉब्लम सब दे आती है। यही कि थोड़ी जिंदगी च प्रॉब्लम्स हैं तो दूसरा बंदा बहुत खुश है, देखने विच बहुत अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम का मतलब है स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम का मतलब है ग्रोथ, प्रॉब्लम का मतलब है सक्सेस। हर प्रॉब्लम के पीछे एक सोल्यूशन होता है। सो नोट वर्क ऑन प्रॉब्लम, वर्क ऑन सिचुएशन एंड सोल्यूशन। एक छोटी जी कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर एक प्यारा जहा खूबसूरत जहा गीत थोड़ी नज़र लेके असी हाजिर होवांगे। तुसी भी कोई गीत संगीत सुनना चाहते हो तो 4162337368 या फिर 4169106000 इज द नंबर टू कॉल। रियल एस्टेट की गलबात होएगी, मॉर्गेज की गलबात होएगी, डेट्स की गलबात होएगी और उस तो उपर एस्ट्रोलॉजी की गलबात होएगी। सो स्टे ट्यून, थोड़ा तो साडा साथ 5 तो लैके 6 बजे तक रेडियो गोल्ड।
1: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड, शाइन विद सोनम, कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें। तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: जो कैसी हो? How's your son doing?
1: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
0: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
2: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 905-457-3232 क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कैंडा।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।
4: वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम, थोड़ा सब दा स्वागत है। चलो एक खूबसूरत जे गीत दी तरफ चल रहे हैं। 90s विच जबरदस्त हिट मूवी मैंने प्यार किया, एंट्री ऑफ सलमान खान एंड भाग्यश्री, उसी मूवी दा एक गीत एस पी बाला सुब्रम मनियम एंड लता मंगेशकर दी आवाज़ विच। शाम हो गई है और जैसे शाम हुई है वैसे ही आप रेडियो को ऑन कर लें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर की जाएगी इस प्रोग्राम में। 416-233-7368 स्टूडियोज़ के नंबर हैं और 416-910-6000 इज़

जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट में स्वागत है आपका। अगर आपको लग रहा है कि टोरंटो का रियल एस्टेट मार्केट अभी भी बस गिर रहा है तो जरा नंबर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी थोड़ी बदल रही है। अगस्त में जीटीए में करीब 5,057 होम्स सोल्ड हुए, जबकि नई लिस्टिंग्स पिछले साल की तुलना में लगभग 14% कम रही। एवरेज सेलिंग प्राइस करीब 993,000 रहा, लेकिन यहाँ आता है हिडन फैक्ट। कम सेल्स का मतलब हमेशा कम डिमांड नहीं होता। कभी कभी बायर्स इसलिए भी नहीं खरीद रहे होते क्योंकि उन्हें मार्केट में अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही होती। मतलब आज की कहानी सिर्फ प्राइस ही नहीं, इन्वेंट्री की भी है, और बायर्स के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगस्त में सिर्फ 12,075 न्यू लिस्टिंग्स आई, जो पिछले साल की तुलना में 14.1% कम लिस्टिंग्स है। हिडन फैक्ट में कम सेल्स का मतलब हमेशा कमजोर मार्केट नहीं होता। अगर मार्केट में प्रॉपर्टीज ही कम आ रही हैं, तो बायर्स के पास चॉइसेस कम होती हैं और कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज पर कंपटीशन वापस आ सकता है, और यही अगस्त में दिखाई दिया। ट्रेप का बेंचमार्क प्राइस साल दर साल 4.5% नीचे था, लेकिन मंथ ओवर मंथ बेसिस पर बेंचमार्क लगभग फ्लैट रहा, और आज का मार्केट पूरे जीटीए में एक जैसा नहीं है। एक तरफ कुछ सेगमेंट्स, खासकर कॉन्डो, अभी भी प्रेशर में है। बैंक ऑफ कनाडा ने भी टोरंटो कॉन्डो मार्केट में इन्वेस्टर डिमांड और पॉपुलेशन ग्रोथ के बदलते डायनामिक्स को महत्वपूर्ण फैक्टर बताया है, लेकिन दूसरी तरफ लो इन्वेंट्री वाले नेबरहुड्स में अच्छी प्रॉपर्टीज का कंपटीशन असल कहानी बता सकता है। इसलिए ये कहना कि मार्केट डाउन है या अब मार्केट रिकवर कर रहा है, दोनों ही दो अधूरी तस्वीरें हो सकती हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने अपने पॉलिसी रेट को 2.25% पर अनचेंज रखा था। साथ ही बैंक ने बताया कि कनेडियन इकोनॉमी ने सेकेंड क्वार्टर में 3.3% ग्रोथ दिखाई, लेकिन इन्फ्लेशन और ट्रेड अनसर्टेनिटी अभी भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब बायर के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना काफी नहीं है, उन्हें देखना चाहिए प्राइस प्लस मॉर्गेज पेमेंट प्लस इन्वेंट्री प्लस लोकेशन प्लस प्रॉपर्टी टाइप। इन पांचों को साथ रख कर ही पिक्चर साफ होती है। और इम्पोर्टेंट बात, अगर कोई बायर कहता है मैं प्राइस और नीचे आने का इंतजार करूंगा, तो सवाल ये होना चाहिए कि अगर प्राइस थोड़ा नीचे आया भी तो उस समय अच्छी प्रॉपर्टीज की सप्लाई भी कम होगी और कंपटीशन बढ़ गया तो आप क्या करोगे। यही है आज की जीटीए मार्केट का हिडन गेम। प्राइसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चॉइस। जीटीए की तस्वीर यही है। मार्केट ना पूरी तरह बायर्स मार्केट की कहानी कहती है, ना सेलर्स मार्केट की। ये एक सिलेक्टिव मार्केट है जहां सही प्रॉपर्टी और सही प्राइसिंग बहुत मायने रखता है। सुनते रहें रेडियो गोल्ड। शुक्रिया।

चांदनी बियॉन्ड स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं, और हर सितारा एक कहानी कहता है, और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार दी शाम दी महफिल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो तुहाडा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज तुहाडी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नूं सारे परिवारां नूं बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुशामदीद एंड स्वागतम

0: और बेस्ट रेट प्रोवाइड कर सकते हैं।
1: थैंक्स दोस्त, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही हल कर दी।
0: यदि आप भी अपनी ऑटो, होम, बिजनेस, लाइफ या ट्रेवल इंश्योरेंस के बेस्ट रेट्स और प्रोफेशनल सर्विस चाहते हैं तो फोन करें कुलविंदर गुलेरिया को 6472180726। दैट इज 6472180726।
2: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6477702
3: लाइसेंस नंबर 10394।